0: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वाल से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उक्र संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: आई गई क्या आज तो पहिला नौकरी को पहिला महीना तनखा खाइकन आएकी होली मेरी चेली।
2: तनखा खाइकन होइन बुवा, तनखाले भोलिका दिन कि ढुक्क पारिकन आएकी छु। हो भने बुवा, पहिला महिनाको तनखा पाउने बित्तिकै मैले आफ्नो जीवन सुरक्षित बनाएकी छु। सिटिजन लाइफमा त कसा राम्रा राम्रा योजना रहेछन्। भाइका लागि बाल भविष्य योजना, तमिरे आमाका रिटायरमेन्टका समयका लागि घातक रोग सुविधा सहितको पेन्सन योजना, वाचि मेरा भविष्यका लागि सेभिङ ग्रोथ प्लान पनि रहेछ। तर पहिला महिना तनखाले सबैको एकैचोटि हर्न सम्भव भएन, त्यसैले अहिले आफ्नो जीवन सुरक्षित गरिकन सुरु गरे।
1: ठिक गरिबा, आफैबाट सुरु गर्नु पर्दछ। हाम्रा पालामै त यसो गर्नु भन्ने थाहै थिएन, तर तमीहरूका पुस्ताले त समय अनुसार स्मार्ट डिसिजन लिइकन भविष्य सुनिश्चित गरिकन अगाडि बढ्न लागेका छ।
2: बुवाका अनुभव र मेरो सचेतना मिलिकन हाम्रो परिवार झिक सुरक्षित हुन्छ त, हैन बुवा? सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स, जहाँ भरोसा र भविष्य सँगसँगै हिटो छ। झिक्क कुरा थाहा पाउनका लागि हाम्रा बिमा गर्ने मान्छे नजिकैका शाखा कार्यालय वा फोन नम्बर 01-5970-217 नि सम्पर्क हर्या।
3: सापन कुछु नि कराइट, साँप कुछु नि कर्त, ल्या ऊ अपने चल गेल त, कुछु कराइल त ओ सक्कू साँप बिखा थे निरट।
4: बिखा हो कि नि हो कसी कति हिँडाक दाई?
5: ल्या नेपालमा पाँचजना बिखा साँपनको विषयमा सुन। एक ठोरठ गरैचा जोन खास कैख रातिक समयमा घरभित्र पैठ सेक्ठ, यी कटलसे निबठाई फे स्याकत, तर कटलक पाछ डेही भाग जो निचलना कैख सास फ्यार जो निसेकना मेसे लक्व हुई सेक्ठ। औरठ डोम जोन बडा रिसाह मेरिक रठ, निकर फाँट फुले थ डोम साँप दिन वा रात दुनुमा देख पर्ना ओ खास कैख सन्ध्या बिहान देख पर्छ, निकर कटलसे फे लक्व हुई सेक्ठ। ओ औरठ कैली जाटक साँप, निकर कटलक कलसे कटलक भाग सुई था, वो बड़ा कर रसे बठे था, रकत थे पाटी होकर रकत बहना हुई से था। उसे कह हमार देशक तराई सक्कू भूभाग में पा देना बगोपने न फुनकारना बाधे सा, ई सांप दस लाख बेरहमेन कम खेल पा दे था, तर हिंकर न कटाई एकदम खतरनाक रहा।
6: बर्खा छ्याको अनाज बिक्रिना समयमा सापनका कटाई अथवा दसाईका घटना ढिउर बिना कथा बहिया वो और प्राकृतिक प्रकोपको कारण सापनका बछारा नाश विदेश सापनका दसाईका घटना ढिउर बिना कर लगपा दे।
7: झुर जसिन सापनका दसाई हानिकारक नि रहत, वह फे यदि सपवा दस डारल कलसे तुरन्त लगभग उपचार केन्द्रमा जा जाइ पर।
8: विश्वास लग्ना हो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैख पत्ता लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org मा जाख आवश्यक जानकारी लिए सक्दै था।
9: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना

0: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जै बो पाछ से शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल
1: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान बर्जन का ना घर हेरू ना पट्टा सुगुर बनैल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए
2: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषतः हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541 43 26
3: के तपाईलाई थाहा छ
4: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ
3: हो र
4: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
3: अनि
4: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं
3: के छ त विकल्प
4: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं
3: विस्तारै गर्दा हुँदैन
4: अहँ हुँदैन टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
3: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
4: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टीकापुर कैलाली
1: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
5: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
1: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई तो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरानी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
5: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9860476417

0: बुका पिएरै ठ कबु पेन्सिलेरै ठ कबु झलै फटाका आजि ठ का कना हो बाबा फ्यो ओस्ट बाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनला से त लड़का सामान निहरै
1: ओहो इ बुढा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराइती रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कै ठ कबु पेन्सिल हेरा कै ठ कबु झोलै फटाका ठ बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नि छिक ठो
1: अरे कहाँ से नानम थ
0: कहाँ से लनबो ओ त का हो टीकापुर म रलक रडगैया झोला उडोक म से वहाँ झिंगरान दिदी कटरास गोर झोला आनला बाटी ना कबु लड़का का पिएरै ना कबु पेन्सिल रहिथिन ना झोला फाटल हुइथिन कहियक आनल झोला जस काटस बाटिन यी बुढक ढंग कबु पसल छानकन झोला नि आन स्याक ठुही
1: ल्या ल्या मैं अब भी जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जस्ते स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे ठार भाषक खोज खबर में यहां उकरण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनते रह बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। गौशाला के गोबर से तमाम सामग्री उत्पादन संबंधी टीकापुर में तालीम शुरू। टीकापुर में बाल मैत्री और पोषण मैत्री स्थानीय शासन पालिका घोषणा के लाग छलफल। सामुदायिक पुस्तकालय के साधन सभा शुरू। गणपूरक संख्या नई पुगलक ओर से साधन सभा के बंद सत्र यह जेठ 14 गते हुई न। आज सातु प्रदेश में वर्षा के संभावना। कोसी और मध्य प्रदेश में आंधी हुरी समेत के संभावना रहल मौसम बीत के कहाई। उत्तर पश्चिम सरकार के बेरुजू 60 करोड़ भौतिक पूर्वाधार में आधा हिस्सा। आप पूरा खबर। गौशाला के गोबर से तमाम सामग्री उत्पादन संबंधी सिपमूलक तथा आय आर्जन मूलक तालीम टीकापुर में शुरू हुईवा। टीकापुर नगर पालिका के आर्थिक सहयोग तथा समन्वय में सामुदायिक पशु चौपाया व्यवस्थापन तथा प्रबंधन समिति टीकापुर के आयोजना में तालीम शुरू हुईलक हो। तालीम उद्घाटन करती प्रतिनिधि सभा सदस्य कोमल गेवाली गोबर के प्रयोग करके आर्थिक आत्मनिर्भर हुईना के साथ महिला होकरन घर में बैठ के आय आर्जन करना माध्यम बन्न रलक और से तालीम उपयोगी हुईना बटोले बाट गैया संरक्षण करके आय आर्जन के काम फिर समेत करती रलक और से गौशाला व्यवस्थापन हे धन्यवाद दिले बाट। सुरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मण किशोर चौधरी जन्म देना माता समेत गौ माता लद्या लगायत के 5 प्रकार के माता होकरन के संरक्षण कर सकले से परिवार और संस्कृति संरक्षण होने बताई थी। गौशाला विकास के लग आगामी आर्थिक वर्ष में प्रदेश सरकार के बजेट व्यवस्था करना प्रतिबद्धता जनैले बाटे। कार्यक्रम में प्रशिक्षक एकता मेहता से स्थानीय स्तर में पाजिना गैया के गोबर प्रयोग करके तमाम सामग्री निर्माण करके पुरातन संस्कृति के संरक्षण के साथ ही महिला सशक्तिकरण में फिर भारी योगदान दे सकना बतुले बाट। टीकापुर नगर पालिका के लेखा अधिकृत लक्ष्मी ओडसे पालिका के नीति कार्यक्रम में समेत वातावरण संरक्षण सांस्कृतिक संरक्षण सामाजिक विकास जैसी बात समेत जिना स्थानीय सरकार के स्थानीय समेत स्रोत के प्रयोग करके वातावरण संरक्षण में समेत सहयोग पुगना रलाकोर से इतालिम उपयोगी मान के सहयोग करना बटोले बाटे। गौशाला व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष उत्तम कुमार शाह से उत्पादन उत्पादकत्व और बाजारीकरण के लाख फिनिशिंग मजा दे सके ले सकल से एडवांस खाल के तालीम आयोजन करगिलक बटोले बाटे। कार्यक्रम में सहभागी हुकरा पशु चौपाय के संरक्षण संगे वातावरण संरक्षण फोहर व्यवस्थापन जैसिन काम में सहयोग पुग्ना बटोले बाट तालीम में टोल विकास संस्था के 50 जनी सहभागिता बाट 9 दिनसम संचालन हुन तालीम में 2 समूह में विभाजन करके 50 जनी लेलक हो। टीकापुर नगर पालिका संघ संस्था समन्वय शाखा प्रमुख अमृता रावल से संचालन करलक। कार्यक्रम में स्वागत गौशाला व्यवस्थापन समिति के सचिव महेन्द्र गिरी करलवाट तालीम सहजीकरण करना भारत मन से प्रशिक्षक आयल लोक सांस्कृतिक मंच अंशा समेत बेलाफेयर अर्गनाइजेशन इंदौर भारत के 4 जने महिला प्रशिक्षण देती बाटे। टीकापुर सामुदायिक पुस्तकालय के साधन सभा में गुण पूरक संख्या नई पुगलक ओर से बंद सत्र स्थगित करगिल बा। कालीखोल साधन सभा में गुण पूरक संख्या नई पुगके यह जेठ 14 गते समकेलक बंद सत्र स्थगित करगिल बा। साधन सभा के बंद सत्र अब दूसरा पटक यह जेठ 14 गते हुई थी बा। यह आगे साधन सभा के उद्घाटन करती टीकापुर नगर पालिका के कार्यवाहक नगर प्रमुख राम बहादुर नगरजी से टीकापुर सामुदायिक पुस्तकालय सामुदायिक के संपत्ति रलकोर से सकुजानी संरक्षण करे पर्नामा जोर देले बाटे। कार्यवाहक नगर प्रमुख नागरजी से सामुदायिक पुस्तकालयमा जोगैना टिकापु नगरपालिकाको फेरि दायित्व भित्र पर्न रहेको उर्से आगामी वर्ष केलाक बजेट समेत व्यवस्था गर्न आश्वासन दिएबाटै टिकापु नगरपालिकाकी निवर्तमान नगर प्रमुख तपेन्द्र बहादुर रावलसे सामुदायिक पुस्तकालयके जौन उद्देश्यके साथ कल्पना से निर्माण करगिलख हो ऊ अनुसार काम हुई नै सकलक कहती कमी कमजोरी सच्याके आगे बढे पर्न बटोइलेबाटै सामुदायिक पुस्तकालयके पूर्व अध्यक्ष लोक बहादुर खड्का से आपन कार्यकालमा पुस्तकालय संचालन केलक आधार स्तम्भ तयार पर्न कहती पुस्तकालयके आर्थिक भार कम गर्न कर्की दीर्घकालीन आमदानीके स्रोत बनाई पर्ना बटोइले बाटै पुस्तकालयके अध्यक्ष तारा प्रसाद जोशीकी से विगतमा समितिके पुस्तकालयके आधार स्तम्भ खड़ा करके पुस्तकालयके नमूनाके रूपमा आगे बढ़ैती लैजिना बटोइती देशभरिक पुस्तकालय मध्ये टिकापुर सामुदायिक पुस्तकालय फे एक थो नमूना पुस्तकालय रहल बटोइले बाटै सभामा संचालनमा सचिव देवेन्द्र बहादुर शाह कलर हैं कलसे स्वागतको साध्यक्ष वीरेन्द्र साउत कलर हैं खोजखरमा गरी विश्राम विश्राम पाछे फेर सेवी सुन्तिर सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम
1: महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय कञ्चनपुरको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना
2: सिटिभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्र नगर कञ्चनपुरमा न्यूनतम शुल्कमा प्राविधिक स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू अध्यापन गराउन शैक्षिक सत्र 2083-84 लागि 3 वर्षे प्रमाण पत्र तह मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी सीएमएलटी 30 जना सामान्य चिकित्सा एचए 40 जना नेत्र विज्ञान ओए 40 जना डिप्लोमा इन फार्मेसी डीपीएच 40 जना विद्यार्थीहरूको अनलाइन फर्म खुलेको सहर्ष जानकारी गरिन्छ
1: भर्ना कार्यक्रम
2: अनलाइन आवेदन फारम वितरण शुरू 29 गतेदेखि
1: अनलाइन आवेदन फारमको अन्तिम मिति जेठ 13 गते बुधबार
2: आवेदन फारम शुल्क ₹1000 मात्र अनलाइन आवेदन फारम www.ctvt.exam.org.np को ITMS मा भरी अनलाइन सबमिट गर्नुपर्नेछ अनलाइन आवेदन फारम भर्नका लागि एसएका कागज पत्र ल्याई शिक्षालयमा भर्न सकिनेछ
1: आवश्यक कागज पत्रहरू
2: एसई एसएलसी उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यता सकलबाट स्क्यान गरिएको प्रति
1: जन्म दर्ता नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र स्क्यान प्रतिलिपि
2: लक्षित वर्ग खुल्ने कागजातहरूको स्क्यान प्रतिलिपि
1: स्पष्ट मुखाकृति देखिने हाल सालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो
2: कोटामा भर्नु पर्ने भएमा सो स्थानीय तहको सिफारिस
1: सम्पर्क स्थान महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्र नगर कञ्चनपुर
2: सम्पर्क नम्बर 0969-00044 98-58-78-00044 98-487-20-247 97-642-33-921 र 98-69-63-520
3: के तपाईलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्
4: ग्रीष्मा टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हटब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ब्याग प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफद मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला ग्रीष्मा टेरस टिकापुर कैराली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849-85-18-08
5: कर्णाली नमुना मावि टिकापुरमा शैक्षिक सत्र 2083 का लागि कक्षा 11 मा विभिन्न संकायमा भर्ना खुल्यो
6: कर्णाली नमुना माध्यमिक विद्यालय टिकापुरमा विज्ञान र इन्जिनियरिङ संकायमा उत्कृष्ट नतिजा सँगै शैक्षिक सत्र 2083 का लागि कक्षा 11 मा कानून होटल म्यानेजमेन्ट मानविकी र शिक्षा संकायमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुलेको सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा जानकारी गराइन्छ सिट सीमित छ आजै सम्पर्क गर्नुहोस्
5: जेहेन्दार प्रवेश परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थी र खेलाड़ीहरूका लागि विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था रहेको छ
6: प्रणाली नमूना माध्यमिक विद्यालय टिकापुरका विशेषताहरू
5: फराकिला कक्षाहरू
6: विज्ञान तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला भएको
5: पुस्तकालय तथा ई लाइब्रेरीको व्यवस्था भएको
6: खेलकुद सुविधा
5: कम्प्युटर शिक्षा
6: स्वच्छ पिउने पानी
5: क्यामेराको निगरानी र यातायातको सुविधा पनि छ।
6: कर्णाली नमूना माध्यमिक विद्यालय टिकापुर कैलाली सम्पर्क नम्बर 98584 24167
5: तपाईँको भविष्य निर्माणको एक सहयात्री।
7: टिकापुर नगरपालिकाको ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा सञ्चालन बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना।
8: टिकापुर नगरपालिकाको आयोजनामा नगरपालिका भित्रका तपसिलका वडाहरूमा गर्भवती महिलाहरूका लागि निशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा भिडियो एक्सरे सेवा तपसिलको स्थान मिति र समयमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई सेवा लिन आउन हुन अनुरोध गरिन्छ। नारायणपुर स्वास्थ्य चौकी वडा नम्बर 6 जेठ 10 गते समय बिहान 10 बजेदेखि
7: झुङ्गा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र वडा नम्बर 9 जेठ 11 गते समय बिहान 10 बजेदेखि
8: रामपुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र वडा नम्बर 3 जेठ 12 गते समय बिहान 10 बजेदेखि
7: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर कैलाली।
0: विश्राम पाछे फेरसे स्वागत बा। कैलालीकी टिकापुरमा बाल मैत्री ओ पोषण मैत्री स्थानीय शासन घोषणा केला छलफल हुल्बा दुई दिने अभिमुखीकरणमा वार्ड नम्बर 7 ओ 9 के जनप्रतिनिधि कर्मचारी सरकारवाला हुक्रनके सहभागिता रह। वार्ड नम्बर 7 के वार्डाध्यक्ष अज्ञ प्रसाद न्यौपानीके अध्यक्षतामा हुल कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि टिकापुर नगरपालिकाके कार्यवाहक नगर प्रमुख रामबहादुर नगरजी से बाल बालिका हुक्रनके भविष्य र लकोरसे बाल बालिका हुक्रनके हितमा काम गर्न औ बाल बालिका उपर लगानी बढ़ैन आवश्यक रहलमा जोड़ दिलेबाट उहाँ पालिका हे नै बाल मैत्री स्थानीय शासन पालिका घोषणा गर्न प्रयास गर्ति रलक बटीलेबाट वडा अध्यक्ष न्यौपाने बाल बालिका हुक्रन योग्य बनाइन पोषण स्वास्थ्य शिक्षा जैसिन सकु क्षेत्रमा लगानी गरे पर्न हो याकरला एमना लगानी गर्नमा आफ्ना प्रयासरत रहल बटुलेबाट कार्यक्रमके प्रशिक्षक अशोक खनालसे सरकारके लक्ष्य अनुसार बाल मैत्री स्थानीय शासन पालिका घोषणा केलक बाल मैत्री ओ पोषण मैत्री बनाइन बाटमा प्राथमिकता देह पर्नमा जोड़ दिलेबाट विकास केलक युवा ऐक्यबद्धता याद धनगढ़ीकै आयोजनामा हुइलक कार्यक्रममा ललित तमत्ता शिक्षक उपेन्द्र खड्का बालिका सृष्टि चौधरी लगायत चापन विचारधरले रहे। यार्ड ढनगढ़ी से कैलालीमा बाल समृद्धि केलाक बाल मैत्री उपोषण मैत्री स्थानीय शासन लागूमा करकलाक सघैती रहलबा। यार्ड ढनगढ़ी ओ उलविजन इन्टरनेशनल नेपालके संयुक्त साझेदारीमा बाल समृद्धि केलाक हातेमालो परियोजना अन्तर्गत टिकापुर भजनी घोडाघोडी नगरपालिका गौरीगंगा ओ कैलाली गाउँपालिकामा परियोजना सञ्चालनमा बा। हाल नेपालमा पश्चिमी वायु स्थानीय वायु तथा नेपालके पूर्वी भूभाग लगह न्यूनचापीय क्षेत्रके प्रभाव रहल मौसम पूर्वानुमान महाशाखासे जनाइलबा। जेकर प्रभाव से हाल देशभर साधारणतया मौसम बदलतीबा। आज दोपहर के कोशी बागमती और गंडकी प्रदेश के मा समेत साधारणतया मौसम बदलन बाकल से मध्य प्रदेश लगायत के बाकी प्रदेश के हिमाली और पहाड़ी भूभाग में आंशिक मौसम बदलन बाकल से तराई भूभाग में मुख्यतया मौसम सफा रहना बा। कोशी बागमती और गंडकी प्रदेश के हिमाली पहाड़ी भूभाग में कुछ स्थान में मेघगर्जन प्रदेश में समेत मध्य प्रदेश में लगायत बागमती गंडकी तराई भूभाग में उत्तर कर्णाली लुम्बिनी सुदूरपश्चिम प्रदेश के हिमाली भूभाग में एक दो स्थान में चट्याङ सहित वर्षा के संभावना रहलबा। सुदूरपश्चिम और लुम्बिनी प्रदेश के पहाड़ी भूभाग में टाटुल दिन तथा तराई भूभाग में टाटुल लहर चलने संभावना बा। मध्य और कोशी प्रदेश के तराई भूभाग में कम स्थान में हावाहुरी के संभावना बा। आजाद की कोशी प्रदेश लगायत के बाकी हिमाली भूभाग में साधारणतया मौसम बदलन बा। कलसे कोशी बागमती और गंडकी प्रदेश के हिमाली भूभाग में समेत कम स्थान में समेत औसतक कर्णाली प्रदेश के पहाड़ियों हिमाली भूभाग में एक दो स्थान में चट्याङ सहित मध्यम वर्षा के संभावना रहलबा। कंचनपुर कैलाली डोटी बर्दिया बांके और दांग में तातु लहर लू चलना संभावना रलक उससे सतर्कता अपनैना महाशाखा से आग्रह कर लबा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार के कुल बजेट के झंडे आधा हिस्सा विनियोजन हुईना भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय में बेरोजुफे रहल झंडे आधा हिस्सा देख गिलबा। महालेखा परीक्षक के आर्थिक वर्ष 2081-82 के प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार के कुल बेरोजु 60,48,89,000 रूपया र लगमा भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय के बेरोजु 27,66,31,000 रूपया पुगलबा। वर्षमा प्रदेश सरकार के 31,62,98,28,000 रूपया बजेट विनियोजन खुलबा। जमना भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय मकेल समेत 14,59,78,84,00,000 रूपया बजेट विनियोजन करगिल है। वर्ष प्रदेश सरकार के कुल 39,49,55,000 रूपया लेखा परीक्षण के प्रतिवेदन में उल्लेख करगिल बा। अरू मंत्रालय मध्य सामाजिक विकास मंत्रालय में 22,16,18,000 रूपया ओ उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्रालय में 4,61,42,000 रूपया बेरोजु देख गिल्बा। प्रदेश के 159 कार्यालय के लेखा परीक्षण करबेर 5,49,33,000 रूपया असूल उपर कर पर्नामा 50,09,87,000 रूपया विनियोजन कर पर्ना तथा 4,89,89,000 रूपया पेशकी बाँकी रहल प्रतिवेदन में लिखल बा। सुदूरपश्चिम प्रदेश के कुल 3,54,85,68,000 रूपया बेरोजु रहन बाँकी समेत प्रतिवेदन में उल्लेख करल बा। खोज खबर में एक घड़ी विश्राम विश्राम पास फिर से भी सुनते रहिए सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
9: टीकापुर सामुदायिक पुस्तकालय टीकापुर कैलाली को बंद सत्र होने बारे को सूचना। टीकापुर सामुदायिक पुस्तकालय को जेठ 9 गते छैठौं चुनावी साधारण सभा में विधान बमोजिम को गणपूरक संख्या अपुग रहेको हुँदा तपसिल को मिति स्थान र समयमा बन्द सत्र हुने भएकाले पुस्तकालयका आजीवन र संस्थागत सदस्यहरूलाई उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। सभामा पेश हुने प्रस्तावहरू हाल विधानको धारा 27 को गणपूरक संख्या संशोधन सम्बन्धमा हाल विधानको कार्यसमिति गठनको दफा 16 को उपदफा 6 थप गर्ने सम्बन्धमा तपसिल मिति 2083 साल जेठ 14 गते समय बिहान 8 बजे स्थान टीकापुर सामुदायिक पुस्तकालयको सभा हल।

0: जानकी गाउँपालिकाको गाउँवासीहरूमा हार्दिक अनुरोध।
1: नेपालको संविधानको भाग 3 मौलिक हक धारा 39 अन्तर्गत बालबालिकाको हकको व्यवस्था भएको र बालबालिका ऐन 2075, बाल श्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन 2056, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 समेतलाई कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि गाउँपालिका तत्पर रहेको हुँदा 20 वर्ष मुनिका किशोर किशोरीहरूले विवाह गरे गराएमा भागे भगाएमा दुवै पक्ष कानून बमोजिम दण्डनीय हुने भएकाले 20 वर्ष मुनिका विवाहहरू विवाह दर्ता नहुने र स्वतः बदर हुने भएकाले आफू सचेत भई अरूलाई सचेत गराई कानूनको पालना गर्न गराउनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। साथै बालबालिकालाई निकृष्ट प्रकारको श्रम जस्तै मोटर ग्यारेज, होटल, कारखाना, गिट्टी बालुवा, घरेलु कामदार, गाडीमा सहचालक आदिमा नलगाउन, 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि निकृष्ट श्रममा नलगाउन, धुम्रपान, मद्यपान, स्वतेजन्य पदार्थको खरिद बिक्री गर्ने कार्यमा बालबालिकालाई प्रयोग नगर्न हुन र अनिवार्य विद्यालय भर्ना गराई नियमित पठन पाठन कार्यमा संलग्न गर्न हुन हार्दिक अनुरोध छ। कानून विरुद्धका कार्यहरू भए वा गरे गराए कानून बमोजिम कारवाही हुने बेहोरा समेत सम्पूर्ण गाउँवासीहरूलाई जानकारी गराइन्छ।
0: अध्यक्ष गणेश चौधरी, बालमैत्री स्थानीय शासन गाउँपालिका समिति।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकलमा जाइस् त?
3: मै नै जाइ, उहाँ आफन अनुहार बिगर्थे, घर से बाहर नै निकर्छु।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाइको। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होइसे उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होइति रहल बा।
5: सम्पर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टीकापुर। फोन नम्बर 9860071024 ओ 9846777417।
6: विश्राम पाछ फेर से स्वागत बा। विकास के लागि युवा एकीबद्धता या धनगढ़ी के 13 वार्षिक साधारण सभा ओराइल बा। शनिचर के धनगढ़ी में आयोजित एक कार्यक्रम बीच साधारण सभा सम्पन्न भइलेख हो। साधारण सभा के अवसर में संस्था से गोदावरी नगरपालिका के अनाथ तथा आर्थिक रूप में विपन्न परिवार के तीन जहान परिवार के बाल बालिका हुकलन छात्रवृत्ति दय के कक्षा 10 सम्म निःशुल्क पढ़ना निर्णय करल बा। कार्यक्रम में उबाल बालिका हुकलन एक वर्ष के लग पुग्न करके आवश्यक शैक्षिक सामग्री समेत हस्तांतरण करल बा। सभा संबोधन करती याद के अध्यक्ष विमला भंडारी से इस संस्था सुदूर पश्चिम के सीमांत क्रेट समुदाय के महिला बाल बालिका और युवा हुकरण के आवाज बनना सफल हुई बतौले बाटे। साथ ही याद से विगत के वर्ष में शिक्षा, बाल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, युवा उद्यमशीलता, यौन तथा प्रजनन, स्वास्थ्य और सामाजिक समावेशीकरण में उल्लेखनीय काम करलक जनागिल बा। समावेशी, ऊर्जाशील ओ परिवर्तनमुखी पहिचान र लगहती, युवा सशक्तिकरण ओ महिला नेतृत्व विशेष प्राथमिकतामा धरके सामाजिक परिवर्तन के अभियानमा लाग परल बतैले बाटै। सुरपश्चिम के सामाजिक समस्या अभिनपूर्ण रूपमा समाधान हुई नै सेक्लाक ओर्से आपन संस्था नियन्त्रता बेटी रलक औ एकरलक सरकार, दात्री निकाय, नागरिक समाज तथा समुदाय के सहकार्य आवश्यक रहलमा जोड़ देले बाटै। कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार के नीति तथा योजना आयोग के सदस्य निर्प बहादुर सुनार से युवा हुकरण के क्षेत्र में काम करबेर बनैना योजना चालू प्रकृति के नै हुके पूंजीगत प्रकृति के रलकमा जोड़ देले बाटै। साथ ही आगामी वर्ष के 3 योजना तथा कार्यक्रम अभिनव प्रभावकारी बनैना सकुनसँगै छलफल और सहकार्यमा निरन्तरता देती रहनमा बतैले बाटै। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश के सामाजिक विकास मंत्री मेघराज खड़का से प्रदेश सरकार के युवा हुकरण उद्यमशील बनैना हो मानसिक स्वास्थ्य सुधार के लग 5 वर्ष कार्य योजना बनाके लागू करना बतैले बाटै। वहां समाज के समस्या समाधान करके नागरिक हुकरण के जीवन स्तर ऊपर उठैना राज्य के प्रयास पर्याप्त नहीं हुलक और एकर लग नागरिक समाज यार्ड जैसन गैर सरकारी संस्था के सहकार्य आवश्यक रहल बटुले कार्यक्रम में तमाम संघ संस्था के प्रतिनिधि और सरकार वाला हुकरण के सहभागी रह। आगामी जेठ चार गते से लेके चार दिन लगातार सार्वजनिक विदा देह पर्न हुआ। गृह मंत्रालय के शुक्रवार विज्ञप्ति जारी करती जेठ चार गते बकर ईद उसके अवसर में सार्वजनिक विदा देना निर्णय करल के हो। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता आनंद काफले से जारी करलक विज्ञप्ति अनुसार राजपत्र में प्रकाशित सूचना अनुसार इस्लाम धर्मावलंबी हुकरण के मुख्य त्यौहार चाड बकर ईद के दिन सार्वजनिक विदा देना व्यवस्था करल बा। वह अनुसार जेठ 14 गते देशभर विदा होना करल बा। ओकर पास से जेठ 15 गते गणतंत्र दिवस के अवसर में फिर सार्वजनिक विदा रहना बा। कल से उस तरह के जेठ 16 गते शनिचर और 17 गते अतवार पड़क ओर से नियमित साप्ताहिक विदा पर्न रहक ओर से लगातार चार दिन विदा सार्वजनिक करल बा। यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से। गौशाला के गोबर से तमाम सामग्री उत्पादन संबंधी टीकापुर में तालीम शुरू। टीकापुर में बाल मैत्री उपोषण मैत्री स्थानीय शासन पालिका घोषणा के छलफल। सामुदायिक पुस्तकालय के साधन सभा शुरू गण पूर्वक संख्या नहीं पुग्लक से साधन सभा के बंद सत्र यह जेठ 14 गते हुई। सातु प्रदेश में वर्षा के संभावना कोसी और मध्य प्रदेश में आंधी हुरी के समेत संभावना रहल मौसमविद के कहाई। 80% सरकार के बेरुजु 7 करोड़ भौतिक पूर्वाधार में आधा हिस्सा। लीता बकलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान्ह खबर सुन सकबी। अब के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई। सामुदायिक रेडियो टीका प्रयाक्रम सुनते विराम।

0: कौनो व्यक्ति है लिंग लैंगिकता यौनिकता सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय दमन दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
1: कोट पेट धक्का मुक्का चोट पुगैना गाली गलौज धाक धमकी अपमान गैना जबरदस्ती दुराचार अवांछित स्पर्श दबाव ओ शोषण पैसा में नियंत्रण रखना कौनो ठाव में पैठे नहीं देना बोले नहीं देना जैसी गतिविधि थे लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई था।
0: ऐसी गतिविधि कोई कई ना ओ करे ना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठी। OCMC स्थानीय निकाय सुरक्षित आवास गृह महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र महिला सेल में संपर्क करी
1: अथवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100 महिला आयोग के 1145 बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
0: हिंसा अपने फैनाई करी यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाए। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मंत्रालय महिला समुत्थान परियोजना धनगढ़ी कैलाली। युनाइटेड एकेडमी माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 मा वाणिज्य संकाय मा भर्ना खुल्यो।
2: यस क्षेत्रकै अग्रणी तथा गुणस्तरीय शैक्षिक संस्था युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र 2083 का लागि कक्षा 11 अन्तर्गत वाणिज्य संकायमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुला गरिएको बेहोरा सम्पूर्ण विद्यार्थी अभिभावक तथा शुभेच्छुक महानुभावहरूमा जानकारी गराइन्छ। विद्यालयमा अंग्रेजी तथा नेपाली दुवै माध्यमबाट अनुभवी तथा दक्ष शिक्षकद्वारा आधुनिक प्रविधि मैत्री र व्यावहारिक शिक्षण प्रणाली अन्तर्गत अध्ययन अध्यापन गराइनेछ।
0: पढाइ हुने विषयहरू
3: अनिवार्य नेपाली
0: अनिवार्य अंग्रेजी
3: सामाजिक गणित
0: ऐच्छिक लेखाशास्त्र
3: ऐच्छिक वित्तशास्त्र
0: ऐच्छिक अर्थशास्त्र
3: कम्प्युटर विज्ञान
0: भर्ना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू
3: भर्ना फारम वितरण जेठ 1 गतेदेखि
0: भर्ना सुरु जेठ 3 गतेदेखि
3: कक्षा सञ्चालन जेठ 25 गतेदेखि
0: पठन पाठन समय बिहान 6 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म
3: दक्ष अनुभवी तथा विषयगत विशेषज्ञ शिक्षकद्वारा सहजीकरण गराइनेछ।
0: स्मार्ट क्लासरूम तथा डिजिटल लर्निङ सिस्टमको व्यवस्था
3: विद्यार्थी मैत्री शान्त तथा सुरक्षित शैक्षिक वातावरण
0: नियमित युनिट टेस्ट विकली टेस्ट तथा मोडेल इक्जाम सञ्चालन गरिनेछ।
3: कमजोर विद्यार्थीका लागि विशेष सुधारात्मक कक्षाको व्यवस्था
0: उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई मासिक तथा वार्षिक पुरस्कारको व्यवस्था
3: समय अनुसार प्र्याक्टिकल प्रेजेन्टेसन तथा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङमा विशेष जोड
0: आधुनिक कम्प्युटर ल्याब तथा इन्टरनेट सुविधा सहितको अध्ययन व्यवस्था
3: अनुभवी करियर काउन्सिलरद्वारा भविष्य निर्माण सम्बन्धी मार्गदर्शन
0: नेतृत्व विकास व्यक्तित्व विकास तथा सार्वजनिक बोल्ने कला सम्बन्धी तालिम
3: अनुशासन नैतिक शिक्षा तथा सकारात्मक सोचको विकासमा विशेष प्राथमिकता
0: अतिरिक्त क्रियाकलापद्वारा विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटन गराइने
3: विज्ञान प्रविधि तथा व्यवस्थापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित शैक्षिक भ्रमणको व्यवस्था
0: CCTV निगरानी सहित सुरक्षित तथा व्यवस्थित विद्यालय वातावरण
3: अभिभावक र विद्यालय बीच नियमित समन्वय तथा प्रगति प्रतिवेदनको व्यवस्था
0: सीमित सिट भएकाले समयमै भर्ना सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरिन्छ।
3: हाई डिग्री अफ डिसिप्लिन एन्ड एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्ट भएको
0: थप जानकारीका लागि 091-560-738 091-561-446 98-48-43-31-79 र 98-48-43-36-77
3: युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय टिकापुर कैलाली।
4: ए बा आइकै क्या आज त पहिला नौकरीको पहिला महिना तनखा खाइकन आएकी होली मेरी चेली।
5: तनखा खाइकन होइन बुवा, तनखाले भोलिका दिन कि ढुक्क पारिकन आएकी छु। हो भन्या बुवा, पहिला महिनाको तनखा पाउने बित्तिकै मैले आफ्नो जीवन सुरक्षित बनाएकी छु। सिटिजन लाइफमा त कसा राम्रा राम्रा योजना रहेछन्। भाइका लागि बाल भविष्य योजना, तमिरे आमाका रिटायरमेन्टका समयका लागि घातक रोग सुविधा सहितको पेन्सन योजना, वाची मेरा भविष्यका लागि सेभिङ ग्रोथ प्लान पनि रहेछ। तर पहिला महिना तनखाले सबैको एकैचोटि हर्न सम्भव भएन, तसाईले अहिले आफ्नो जीवन सुरक्षित गरिकन सुरु गरे।
4: ठिक गरी बा, आफैबाट सुरु गर्नु पर्दछ। हाम्रा पालामै त यसो गर्नु भन्ने थाहै थिएन, तर तमीहरूका पुस्ताले त समय अनुसार स्मार्ट डिसिजन लिइकन भविष्य सुनिश्चित

0: ni bayapunu sapwa dasta dharmana rasarasa angnama lanapida se hinaraha
1: ekka gatina hamra sahyog kai khal denti bati den motorcycle ghumaka dharne karina
0: bicha bicha dharmana rasarasa morpa sa baithai ko ekjana dharmana pakar ka baithi upachar kendra sam pugaiber brahmya behos huisek na pila korse pasa se pakar ka baitha parthaka
2: dharmana agar hina kai kamai pakar ka baitha tu sunil ji अपना जैसी मोटरसाइकिल स्वयं सेवक हुई कारण सर्पदंशक ब्रह्मेन उपचार केंद्र लेना सजिलो हुई बा
0: एम्बुलेंस और चार पहिया सवारी से मोटरसाइकिल जो सब कुछ हम सजिला पा दी था पतला ठमटा मई असक मोटरसाइकिल स्वयं सेवक उपलब्ध बाट सजिला से वो झट्ट पाजिला से ब्रह्मेन चार पहिया का सवारी साधन में सजिलो बिना मेर का सुझा कर लगभग एंटी भेनम हुई उपचार केन्द्र में ले जाए पड़ता
1: अपना उम्र जैनी करी ना मई द्वार लगा सके राजे
0: वहां न कटलक सपक फोटो खींचना बाची कर से उठेलन बिहार फोटो खिला से सपक चिन्ह सजिलो बैठा उपचार करना से सजिलो बैठा
2: फोटो मोर मोबाइल में बा अब हमरा जा जाए नहीं तो ढील हुई थी
3: सफर दस दारण कर से उपचार कला मोटरसाइकिल चालक व मोटरसाइकिल स्वयं सेवक से सहयोग ली बेहमे आना अपना वो मोटरसाइकिल चालक का बीच समा सुरक्षित हिना मेर से बैठाई वो लगत एंटीवेनम उपलब्ध होना सर्पदंश उपचार केन्द्र में ले जा रही सप्पा कटलस से मोटरसाइकिल चालक बनाई लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र पुगाई जीवन रक्षा करी
4: सर्पदंश संबंधी भर पर्द ओ सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेबसाइट www.snakebitenepal.org मा हेर सेती था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: ८० प्रतिशत रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्
7: थोपा थोपामा शुद्धता अत्याधुनिक अमेरिकन युभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
8: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ
6: डेलिभरीका लागि
8: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
6: टिकापुर कैलाली
9: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9870101672
10: स्वास्थ्यका लागि पानी
11: गरेको भए होइन गरिहाल्नुहोस् यी सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स
12: अस्पताल भर्नाको खर्च ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिलसँग अब डराउनै पर्दैन सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्सले दिन्छ भर पर्दो स्वास्थ्य बिमा कभरेज न कुनै फाइनेन्सियल तनाव न त क्याशकै झन्झट सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट
11: ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स
12: शिखर इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा
11: अस्पताल खर्च सहाराले गर्छ
12: ई सेवा सबै सधैँ सँगै

0: काफी रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटाका आदि था का कना हो बाबा के उस टपाटी गतिलो ठाव से झोला आन लसे तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कभी लड़का कभी हेरा कई था कभी पेंसिल हेरा कई था कभी झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगला दीदी कटरा से गुर झोला आन लाती ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस कटरस बातिन ये बुरह ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
0: ला फिर यो गाड़ी ने धोखा दिने भयो जहिले पनि बैटरी कै समस्या यो टीकापुर में पनि बैटरी कहाँ पाइएला टेंशन में भाई मत अब
4: भाईलाई थाहै रहेन छ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्रैक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टर में लगने बैटरी पनि सुपट मूल्य में टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्य में पाइन्छ नि
0: ए यो टीकापुर में पनि पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
4: कहाँ हुनु भाई टीकापुर जमरापारी छ नि संजय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
5: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
6: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रान्ड को मोटरसाइकल ट्रैक्टर बस ट्रक टिपर जेसीबी मा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ संजय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
4: सम्पर्क नम्बर 0915604670 र मोबाइल नम्बर 9848581828
7: दाजु हेर्नुहोस् न भाउजूलाई बिरामले च्याप्दै गइराखेको छ तपाईँ भने यहाँ कुनै मतलबै नगरी बसिराख्नु भएको छ भाउजूलाई कतै के भइहाल्यो भने रुनु होला पछि धुरु धुरु
8: के गरौँ त म यत्रो उपचार गरिसके कति ठाउँमा लगिसके तर निकै हुन्न
7: दाइ बरु एकपटक टिकापुरको सत्कार मेडिकल सेवामा जचाउने हो कि के थाहा त्यहाँ उपचार भइहाल्छ कि
8: तैले भन्छस् भने लौ जान्न त त्यो सत्कार मेडिकलमा एकपटक
9: सत्कार मेडिकल सेवाका फास्ट सेवाहरू ओपिडी सेवा भिडियो एक्स रे सेवा ल्याब अर्थात् प्रयोगशाला सेवा इसिजी सेवा मेडिकल सेवा इएनटी सेवा प्लास्टर सेवा बिरामी जाँच्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म डाक्टर हेमन्त स्वार टीकापुर ब्लक नम्बर 7 गोल पार्क नजिक गुम्बा रोड टीकापुर फोन नम्बर 0915605095 मोबाइल नम्बर 9844247359

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के होस्ट पार्टी गतिलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बर थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चेक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गया झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: गरेको भए हैन गरिहाल्नुस् ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स
4: अस्पताल भर्नाको खर्च ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिलसँग अब डराउनै पर्दैन सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्सले दिन्छ भरपर्दो स्वास्थ्य बीमा कभरेज न कुनै फाइनान्सियल तनाव न त क्याशकै झन्झट सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट
3: ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स
4: शिखर इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा
3: अस्पताल खर्च सहाराले गर्छ
4: ई सेवा सबै सधैँ संगई

0: काहुल बाबू अपने कलकल आइत रही अपने का करे कलकल आइत रही ले भुइया में के हो का करे भुइया में ढनवा नाइल बाटी
1: दादू हमारा घास काटा
0: दादू का एम्बुलेंस और चार गोरिया मोटर जो खोज के अस्या लाग के बैठे नहीं हुई यह लगे बस्ती में मोर एक जाने मोटरसाइकिल वाला संघरिया बा कौन कही दादू अपने नहीं आता है ना संघरिया ध्यान दी। हेलो मुकेश तू झटते ही मोटरसाइकिल लेके यहाँ आ जाओ तो यहाँ एक जना बाबू है ना सपवा काट के ना इमरजेंसी पर गिन तुरंत ही उपचार केंद्र में ले जाए पड़ल राजमार्ग 400 मीटर पश्चिम बाव पांचर बाटी ना हमरा मुकेश झटते ही आओ हाँ सबको काम छोड़ कर
2: बेटा संतोष मैं मोटरसाइकिल लेके आएगी झटते ही।
0: सुनी बाबू सपो कटलक मने है ना 17 साइकिल झटते ही एंटी वेनम उपलब्ध हुई उपचार केंद्र में ले जा रहे पड़ता ऐसी ब्याला में सबसे झटते हुई ना यातायात के साधन बाजे पड़ता यदि मोटरसाइकिल के व्यवस्था बाकल से अपने वो सवारी चालक के बीच में सपो कटलक मने है ना सुरक्षित हुई ना मेरे से बैठा कर तुरंत उपचार केंद्र पुराई पड़ता मुकेश मोटरसाइकिल लेके आ गई मोर भरपर में संघरिया मैं तुरंत बेरे में है ना मुकेश के मोटरसाइकिल में बीच से बैठा कर उपचार केंद्र पुगा डालती हूँ अपने मोटरसाइकिल लेके ओरी आए
3: याद करी 7-10 से मोटरसाइकिल स्वयं से डी बलाई सर्पदंश उपचार केंद्र जाकर जान बचाई
4: यदि समय में जो उपचार कर सकल से सांप डस लक मनिन बचाई सक दी था वो इन्हीं में से हुई ना मृत्यु दर थे कम कर सक दी था सांप डस लक मने है ना छट्ट से छट्ट उपचार केंद्र में ले जा डारी यही ले वो मने एक जीवन बचाए भारी मदद कर था विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैथ पट्टा लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org में जाख आवश्यक जानकारी लिए सकती था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय।

0: बुका पिएरै ठ कबु पेन्सिल रै ठ कबु झलै फटाका आजी ठ काकना हो बाबा फे होस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झलान लसे त लड़का सामान निहरै
1: ओहो ई बुढा लिखबे का हुइति जरम भर भर बरैति रहत
0: का हुइ कबु लड़का कपी हेरा कै ठ कबु पेन्सिल हेरा कै ठ कबु झलै फटाका कै ठ बढ़िया ठाउँ से झला लान नि छिक्ठो
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लनबो ओट कहाँ टीकापुर म रलक रटगे यहाँ झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दिदी कटरा सुगर झोला आनल बाटी ना कबु लड़का कहाँ पियरी थी ना कबु पेंसिल रहीन ना झोला फाटल हुई थी कहीं आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुढ़ ढंग कबु पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में
2: रख गई यहाँ झोला उद्योग झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मर्म फेकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
4: कर्णाली नमुना मावि टीकापुरमा शैक्षिक सत्र 2083 का लागि कक्षा 11 मा विभिन्न संकायमा भर्ना खुल्यो
5: कर्णाली नमुना माध्यमिक विद्यालय टीकापुरमा विज्ञान र इन्जिनियरिङ संकायमा उत्कृष्ट नतिजासँगै शैक्षिक सत्र 2083 का लागि कक्षा 11 मा कानून होटल म्यानेजमेन्ट मानविकी र शिक्षा संकायमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुलेको सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा जानकारी गराइन्छ सिट सीमित छ आजै सम्पर्क गर्नुहोस्
4: जेहेन्दार प्रवेश परीक्षामा उत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थी र खेलाडीहरूका लागि विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था रहेको छ
5: कर्णाली नमुना माध्यमिक विद्यालय टीकापुरका विशेषताहरू
4: फराकिला कक्षाहरू
5: विज्ञान तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला भएको
4: पुस्तकालय तथा ई लाइब्रेरीको व्यवस्था भएको
5: खेलकुद सुविधा
4: कम्प्युटर शिक्षा
5: स्वच्छ पिउने पानी
4: क्यामेराको निगरानी र यातायातको सुविधा पनि छ
5: कर्णाली नमुना माध्यमिक विद्यालय टीकापुर कैलाली सम्पर्क नम्बर 98584-24167
4: तपाईँको भविष्य निर्माणको एक सहयात्री

0: शरीरमा लाल वा फुस्टर छुअबेर ठहानी विना स्पर्श शक्ति हेरेलको निखुन्जिना दाग देख पर्लसे हात द्वारा झमझम गर्ना तथा मास सुहाक बठिना हुइलसे कुष्ठ रोग हुइसेक था।
1: कुष्ठ रोग महिला वा पुरुष जेहिफे लागसेक था। कुष्ठ रोग का शंका लगती कि लगभग स्वास्थ्य संस्था वा साइनिंग अस्पताल INF नेपाल बाँके जानकी तीन मानपुर मा सम्पर्क गरी
0: महिला उग्र अस्पताल सम्म आइक्लाको स्वास्थ्य परीक्षण गराइक्लाक आफ्नो घरक पुरुष उग्र मद्दत गरी।
1: कुष्ठ रोग मुक्त समाज निर्माणका लागि साइनिंग अस्पताल INF नेपाल बाँकेसे जनहितमा जारी सन्देश।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800476717
4: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्
5: थोपा थोपामा शुद्धता अत्याधुनिक अमेरिकन यूवी र ओजोनेटेड सहित रिवर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
6: प्योर ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ
4: डेलिभरीका लागि
6: ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल
4: टीकापुर कैलाली
0: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9800710672
5: स्वास्थ्यका लागि पानी

0: थारू भाषा के खोज खबर में अपने स्वागत बा। खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम। अपने हुक्र सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल हाम्रो पात्र और नेपाली पात्र में फिसिन डिल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से बाल कलक के पदाधिकारी तथा शिक्षक को पूर्व सूचना जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु अनुकूलन संबंधी कार्यक्रम। जालवा देवी सेवा समिति टीकापुर के 13 अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्ष राम बहादुर सावत चैन। मेची महाकाली राष्ट्रीय उद्धार यात्रा सड़क आश्रित 120 जना की उद्धार। ओ एसियाली खेतु केलाक नेपाली क्रिकेट टोली घोषणा, कप्तान मधिपेन्द्र एरी। बाल क्लबको पदाधिकारी तथा शिक्षकको विपद पूर्व सूचना, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु अनुकूलन सम्बन्धी एक दिने जनचेतनामूलक कार्यक्रम टीकापुर महुलवा टीकापुर नगरपालिकाकै आयोजना महुलक कार्यक्रम टीकापुर बहुक प्रकोप के जोखिम मरलक धेरुसिन खाली विपदमा जगलाफुर बतायरी पूर्व सूचना महत्वपूर्ण हुना जोड़ दिलबाट पालिका के समुदाय वडा स्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम कर्णाकलबाट बाल बालिका तथा शिक्षक धेर समय विद्यालय में बैठना हुलक विद्यालय में समेत विपद आइसिक्ना हुना सचेत बनना पूर्व तैयारी और व्यवस्थापन में सक्रिय बनना कार्यक्रम कलक वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख निर्मला चौधरी बुटिलवाटी। तालीम 18 विद्यालय के बाल क्लब में आबद्ध विद्यार्थी शिक्षक सहभागी रही विपद जोखिम न्यूनीकरण के लाग शिक्षक विद्यार्थी सचेत तुलसी सहसुना वहां को सक्रियता बढ़ाई पूर्ण बुटीलोट जनता राष्ट्रीय मावी सुनहा फाटा की शिक्षक दैसरा शर्मा बहुप्रकोप के जोखिम भुक्ति रहला व नागरिक विपद व्यवस्थापन बारे जानकारी हुलक आपनो फेस सुरक्षित हुना वो अवरोधान फेस सुरक्षित करना सिक्ना बुटीलोट विपद बारे विद्यार्थी की भूमिका बढ़ाई सकलक जनचेतना फैलना सकलक समुदाय के बढ़िया आग लगी भूकंप देशीन विपद में सेकसिक जुगना होक के बारे सचेत करना सहयोग पुगलक बुटीलोट कर्णाली मावी सत्य के शिक्षक विनोद कुमार चौधरी विपद बारे थप आवश्यक कलक बुटीलोट खड़ग स्मृति मावी टीकापुर के विद्यार्थी अमित परियार व्यवस्थापन पालिका के लिए जिम्मेवारी नहीं हो कि सबको जिम्मेवारी हुलक विद्यार्थी कौन समुदाय सिकाई पर्ना वृक्षारोपण सरसफाई जैसे कार्य में ध्यान दे पर्ना बुटीलोट कर्णाली मावी विद्यार्थी निरुता कुमार विद्यार्थी जानकार खुलक पूर्व तैयारी में समेत सहयोग हुना आपतकालीन नंबर हो सुरक्षित स्थान बारे जानकारी लेना व उर्धान में फिर जानकारी दिना सकना कार्य में सक्रियता बढ़ाई सकना बुटीलोट और विद्यार्थी राजेश्वरी कड़ायट जलवायु अनुकूलन के लाग वातावरण संरक्षण करना सरसफाई में ध्यान देना वृक्षारोपण करना जैसी बात में विद्यार्थी के सक्रियता बढ़ाई पर्ना पाचक समय अफवाह फैलना सूचना के कारण नागरिक में त्रास सृजना हुलक सही सूचना देना सही सूचना हाली समुदाय में पुगेना बाद में फिर विद्यार्थी सहयोगी हुना बुटीलोट विपद व्यवस्थापन के लिए विद्यालय में भूकंप आगलागी बढ़िया पूर्व तैयारी जसिन बात में नमूना अभ्यास के जसिन बात में फिर ध्यान दे पर्ना विद्यार्थी के कहेबा। जालवा देवी सेवा समिति टीकापुर के अध्यक्ष राम बहादुर साउत चयन हिलवाट समिति के आईतवार सम्पन्न हुलक 13 अधिवेशन साउत के अध्यक्षतम 11 सदस्यीय कार्य समिति चयन पलवाट वाकर उपाध्यक्ष तरक बहादुर रावल महासचिव माया साउ सह सचिव जगत विक कोषाध्यक्ष तर्क बहादुर रावल चयन हिलवाट अस्तका सदस्य में रण बहादुर रावल मान बहादुर रावल कटक रावल कृष्णलाल ढुंगाना राजेश्वरी रावल छपट सिंह रावल चयन हिलक निर्वाचन समिति संयोजक केशर बहादुर रावल जानकारी दिलबाट अधिवेशन भद्र रावल के संयुक्त काशीराम रावल गणेश रावल सदस्य रलक तीन सदस्य लेखा समिति फे चयन कलबाट इन्स्याक अधिवेशन के उद्घाटन करती टीकापुर नगरपालिका के कार्यवाहक नगर प्रमुख राम बहादुर नगारजी जालवा देवी सेवा समाज मसे टीकापुर के ढेर नागरिक सेवा लीलक पटेटी अस्थाका नगरपालिका के तर्फ मसे फे सक्दो सहयोग करना प्रतिबद्धता व्यक्त कलबाट टीकापुर नगरपालिका के निवर्तमान नगर प्रमुख तपेन्द्र बहादुर रावल टीकापुर में ढेर मंदिर हुलेसे फिर नियमित पूजा आजा हुना मंदिर कम रलक बुटीलोट वहां असिन नियमित पूजा आजा करना मंदिर हां नगरपालिका के सहयोग कलक स्मरण करती असिन निरंतरता देह पर्ना बुटीलोट टीकापुर नगरपालिका वार्ड नंबर 1 के वड़ा अध्यक्ष मोहन लोहार्विका आपन वड़ा भीतर अलग मंदिर में नियमित पूजा आजा के आवश्यक व्यवस्थापन करना आश्वासन व्यक्त कलबाट। कञ्चनपुरकै भीमदत्त नगरपालिका चार स्थित एक रेस्टुरेन्टमा युवक कुटपिट गरेर घाइते बढ़ेको घटना सार्वजनिक रूपमा प्रहरी अनुसार जेठ 9 गते रातकै गरिब 8:50 बजे भीमदत्त नगरपालिका चारकै गल्ली नम्बर 4 मरलक ग्राण्ड प्यासिफिक रेस्टुरेन्टमा कुटपिट हुँदा उक्त रेस्टुरेन्ट स्थानीय किशोर चन्द सञ्चालनकर्तेलबाट घटनामा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनकै भैया गोविन्द चन्द के उप समीर बुढा अभिषेक अवस्थी गौरव चन्द ठकुरी लगायत कुछ अपरिचित व्यक्ति कोनके कुटपाट करलक प्रहरी जनेलवा कुटपिटमा से घाइते हुलक गोविन्द उपचार कलाक महाकाली प्रादेशिक अस्पताल महेन्द्रनगर पठेला रहे उपचार पाछ उहाँ डिस्चार्ज हुइलबाट घटनामा संलग्न व्यक्तिको फरार लगाउ उहाँको खोजी कार्य हुटिरहल प्रहरी जनेलवा खोज खबरमा एकरी विश्राम विषम पाछ फेरि विश्वतिर सामुदायिक रेडियो टीका प्रफेम
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर मानिसलाई असर गर्छ
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं
1: के छ त विकल्प
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन
2: हुँदैन टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली
3: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार सत्कार पोलिक्लिनिक प्रणाली टिकापुरमा
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने
3: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू
4: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या
3: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
3: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा
4: ईसीजी सेवा
3: डिजिटल एक्सरे सेवा
4: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा
3: फोन नम्बर 98484 27359 र 98482 43 59 सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपा देवी मन्दिर नजिकै
5: शरीरमा लाल वा फुस्सर छुवेर थाहा निमिना स्पर्श शक्ति हेरेलको निखुजिना डाग देख पर्लसी हात गुरा झमझम गर्ना तथा मास सुहाक बठिना हुलसे कुष्ठरोग हुइसेक्ठा
6: कुष्ठरोग महिला वा पुरुष जेहीफे लागसेक्ठा कुष्ठरोगको शंका लब्धिकी लगभग स्वास्थ्य संस्था वा साइनिङ अस्पताल आइएनएफ नेपाल बाँके जानकी तीन मानपुरमा सम्पर्क गरी
5: महिला उग्र अस्पताल सम्म आइक्लाको स्वास्थ्य परीक्षण गराइक्लाक आफ्नो घर पुरुष उग्र मद्दत गरी
6: कुष्ठरोग मुक्त समाज निर्माणका लागि साइनिङ अस्पताल आइएनएफ नेपाल बाँकेसे जनहितमा जारी सन्देश
0: कञ्चनपुरकै महेन्द्रनगरमा से दुईजना सड़क आश्रित व्यक्तिकै उद्धार कलबाट मेची महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा 2083 के टोली एक महिला पुरूष उद्धार कलबाट उद्धार कलक महकुल धनगढ़ी मानव सेवा आश्रम अलग अलग मानव सेवा आश्रम के सदस्य उर्विन सापकोटा जानकारी दिला आज थनगढ़ी में उद्धार कतिबाटिकै वैशाखी 28 गते से मेची मसी शुरू हुलक यात्रामा के क्रम में 120 जना के उद्धार कलबाट उहाँ फे मानव सेवा आश्रम के सड़क पेटी में कोनो फे कष्टकर जीवनयापन करना नै परोस् कै के काकर भिट स्थित मेची पुलवाबा यात्रा शुरू करला रही यात्रा कञ्चनपुर कैलाली हुटी आइतबार बाके पुग्न हुलबाट आनी छोइङ डोल्पा फाउण्डेशन के संस्थापक एवं गायिका आइन छोइङ डोल मा वा आयोजक मानव सेवा आश्रमकै टोली उद्धार कलाक यहाँ आइपुग्लकबाट आश्रमकै सदस्य सापकोटा सड़क आश्रित मानव हुकुनकै उद्धार कलाक देशव्यापी यात्रामा रलग बोटिलोबाट उहाँ मानव सेवा आश्रमकै देश के ध्यौजसिन ठामत 33 सेन्टरलग जानकारी दिला गायिका अनि छोइङ डोलमाकी यात्रामा आर्थिक व्यवस्थापन कर्लसफी मानव सेवा आश्रम अन्य व्यवस्थापकीय भूमिनी भैती अहिलेबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशकी मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह बाजुरा जिल्लाकी हिमाली गाउँपालिका तीन चैयाचौर क्षेत्रमा निर्माणधीन अस्थायी प्रहरी चौकीकी विषयमा लेखिए हुलक झपटमा घाइते हुलक उपचार प्रदेश सरकार कर्णाहुलबाट नेपाली काँग्रेसकी वृहत्तर एकता व पुनर्जागरण केला आयोजित सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय भेलाहा सम्बोधन कति मुख्यमन्त्री शाह घाइते हुनकी उपचार केला सक्कु जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले राव क्षतिपूर्तिकी यकिन विवरण आइलपा छ वाकर व्यवस्थापनमा समेत सरकार गम्भीर रहना उहाँ बोटुलबाट मुख्यमन्त्री शाह घटनामा संलग्न दोषीकी ओपर कानूनी कार्यवाही केला प्रहरी प्रशासन सक्रियता बढ़ीलक जानकारी देती अवरूद्ध कर्णाली कोरिडोर तत्काल सुचारू गर्न स्थायीवासी आग्रह कलबाट जेठ दुई गते बाजुरा जिल्लाकी हिमाली गाउँपालिकाकी तीन चियाचोरमा अस्थायी प्रहरी चौकी निर्माणकी क्रममा हुम्लाकी स्थानीय अवरोध कलक झपटमा हुल रह उक्त झडपमा हुम्लाकी स्थानीय के कुटपिटमा से बाजुरा छजना घाइते हुलबाट घटना पर्छ हिमाली युवा क्लबकै पालिकाकी केन्द्र धुला चौरमा कर्णाली कोरिडोर अवरूद्ध कर्ला रही जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराके समयमा सर्वपक्षीय छलफल होके सड़क सुचारू कर्गिल रही छलफल पाछा छानबिन गर्न टुटलक व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता गर्न घाइते हुनको उपचार सुनिश्चित गर्न हो लालमालाल पाटामा से विस्थापित स्थानीय सुरक्षाके प्रत्याभूतिकरण लगायत छ बुधे सहमति हुल रह सहमति अनुसार माग सम्बोधन नै हुल कति स्थानीयवासी हो युवा हुनके कर्णाली कोरिडोर पुनः अवरूद्ध कर्लबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारकै आर्थिक वर्ष 2082-83 उक्त क्षेत्रमा अस्थायी प्रहरी चौकी निर्माण केला 40 लाख रूपियाँ विनियोजन कला कही प्रदेश सरकारकी हिमाली गाउँपालिका मार्फत वित्तीय हस्तान्तरण कर्की निर्माण कार्य आँखा बोर्डलग जनबाट मुख्यमन्त्री शाह उक्त क्षेत्र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत पर्ना स्पष्टपति विनियोजित बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न बोटिलोबाट खोज खबरमा फेर्से विश्राम विश्रम पासा फेर्से विष्णुतिर विश्व सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम
7: घर त जेनतेन लगाइयो अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
8: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो अल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
7: ए हो त कहाँ पाइरहेछ दिदी अल्मोनियमको झ्याल ढोका
8: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरा पारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
7: अब त म ढुक्क
9: मिलन अल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरा पारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
8: मोबाइल नम्बर 9848541426 जमरा पारी टिकापुर कैलाली
10: नेपालगंज मेडिकल कलेज में कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कंसल्टेंट न्यूरो साइकोट्रिक डॉक्टर आइनोडिन बागवान
11: जेठ 16 गते शनिवार का दिन
12: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में आउँदै हुनुहुन्छ त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला
10: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने बढी रिसाउने झिझो मान्ने बरबराउने अमिलो व्यवहार गर्ने कामकाजमा मन नलगाउने एक्लै बसेर टुलाउने भोक नलाग्ने निन्द्रा नलाग्ने दुब्लाउँदै जाने धेरै रक्सी खाने लागु पदार्थ सेवन गर्ने
12: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी छारे रोग मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या नकारात्मक सोचाइ आउने यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनु होला
11: डाक्टर आउने दिन जेठ 16 गते शनिबार
13: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ याद गर्नुहोस् आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ सम्पर्क फोन नम्बर 9868080008 र 9825637772
14: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्
15: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हट ब्याग थर्मस जर्किङ पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला ग्रीष्म टेरस टिकापुर कैलाली
0: संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान साठी अस्पताल को ठेक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849588008। गेम्स अन्तर्गत क्रिकेट प्रतियोगिता के लागि नेपालको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीकी घोषणा हुँदा नेपाल क्रिकेट संघ क्यान के सार्वजनिक कल खेलाड़ी सूची अनुसार नियमित उपकप्तान अलराउण्डर दिपेन्द्र सिंह गिरिह टोलीकी कप्तान चयन कलबाट मुख्य प्रतियोगिताकै तयारीकी रूपमा हेर्लाको टोलीमा अनुभवी तथा युवा खेलाड़ीकै सन्तुलन मिलेलबाट टोलीकी अन्य सदस्यमा नियमित कप्तान रोहित पौडेल सहित कुशल भुटेल, सन्दीप लामिछाने, आसिफ शेख, कुशेर मल्ल, सन्दीप जोरा, नन्दन यादव, कुशल मल्ल, आरिफ शेख, लोकेश बम, करण केसी, सिम्पाल कामी ओ साहब आलमबाट बालकल्की पदाधिकारी तथा शिक्षकोन विपद पूर्व सूचना जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु अनुकूलन सम्बन्धी कार्यक्रम जलवायु देवी सेवा समिति टीकापुरकै 13 अधिवेशन सम्पन्न अध्यक्षमा रामबहादुर सामुत चयन मिटी महाकाली राष्ट्रिय उद्यान यात्रा सड़क काशी 120 जनाकै उद्धार ओ एसियाली खेलकुद खेलाक नेपाली क्रिकेट टोली घोषणा कप्तान म दिपेन्द्र एरी लिटा बुक्ला खोज खबर तथा प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद डिटी अबुक्ला खोज खबर चाहिँ म सीता चौधरी बिदा हुन्छु एघार पाँच छ बजेकी खोज खबर सुन्न सक्ने सामुदायिक रेडियो टिका प्रोग्राम सुन्ती रवि राम राम
16: हाम्रो सहयोग कैफल डेन्टीबाटी बिहान मोटरसाइकल घुमाएको धर्ने करिना
17: बैठा बैठा रम्यान रसरस मर्पा छ बैठाई ओ एकजना ब्रह्मान पकड़ का बैठी उपचार केन्द्र सम पुगाइबेर ब्रह्मिया बेहोश हुई ना पुला कोर्से पाछा से पकड़ का बैठा पर्था का
18: ब्रह्मान अगर हुई ना कहीं मई पकड़ के बैठा टू सुनील जी अपना जैसी मोटरसाइकिल स्वयं सेवक हुई कारण सर्पदंशक ब्रह्मान उपचार केन्द्र लैजिना सजिलो हुई बा
17: एम्बुलेंस और चार पहिया सवारी से मोटरसाइकिल जो सब कुछ हम सजिला पादी था कतना ठावट मई असक मोटरसाइकिल स्वयं सेवक उपलब्ध बाट सजिला से वो झट्ट पाजिला से ब्रह्मान चार पहिया का सवारी साधन में सजिलो बिना मेरक सुझा कर लगभग एंटी भेनम हिला उपचार केन्द्र में ले जाए पड़ता
16: अपना हुआ जैने करी ना मई द्वान लगा करके राजे
17: वहां न कटलक सपक फोटो खींचना बाटी कर से उठेलन बिहार फोटो हिला से सपक चिन्ह सजिलो बैठा उपचार करना से सजिलो बैठा
18: फोटो मोर मोबाइल में बा अब हमरा जा जाई नहीं तो झील हुई
19: सफर दस दारण कल से उपचार कला मोटरसाइकिल चालक व मोटरसाइकिल स्वयं सेवक से सहयोग ली बिरमे आना अपना वो मोटरसाइकिल चालक का बीच समा सुरक्षित हिना मेर से बैठाई वो लगभग एंटीवेनम उपलब्ध होना सर्पदंश उपचार केन्द्र में ले जाडारी सफर कटल से मोटरसाइकिल चालक बनाई लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र पुगाई जीवन रक्षा करी
20: सर्पदंश संबंधी भर पर्दो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाइ लाख आधिकारिक वेबसाइट www.snakebitenepal.org मा हेर सेर्दिथा
21: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाण्डौ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेण्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
22: घर कहिया सिर्जैबो पाछा से शुरू करल मने घर सिजार सेकल
23: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
22: मिस्तरान वर्जन हो का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बनेला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए
24: UPVC ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
25: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस
1: जमरकी उपार टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नम्बर 9848543426
2: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला टेन्सनमा भए म त अब
3: भाइलाई थाहै रहेनछ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्रैक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि
2: ए यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
3: कहाँ हुनु भाइ टिकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
4: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपट मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ
2: ल ल दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
5: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल ट्र्याक्टर बस ट्रक टिफर जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ
25: सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
3: सम्पर्क नम्बर 0915604670 र मोबाइल नम्बर 9848571828
26: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वा नन्दी भुवा आगिले न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनाइना हुने न पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनाइना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटास तरह तुहार रामपुरान दिदी ये नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बना कान से के कतरा सुघर बना कान लबाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई हो जाए कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261

मिर्जापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार र बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनु हुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो।
1: जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या। यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब।
2: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्र्याक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
0: ए, यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
2: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरापारी छ नि, सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
3: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपट मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
4: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर, बस, ट्रक, टिपर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली, प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
2: सम्पर्क नम्बर 091560470 र मोबाइल नम्बर 98 48 57 18 28।
0: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
5: मैं नहीं जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु।
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
6: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
7: संपर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टीकापुर। फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

0: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? पाछ से शुरू करल मने घर सिर्जार सेकल?
1: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परे सान हो गिल बाटू, मिलबो मिलबो नी करत, का कहना हो का?
0: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना, पटा सुगुर बनेला बाटा, अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना, वट्र फे पटानी हुई कि गुंगवा बुरो हो ना, कबू कहूँ घूम जाए ता था पाए।
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848543426।
3: बीतल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव धल डाक्टर हेमंत स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराई थी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुई लगमार बेरमे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लिह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जाना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 0915600595 ओ मोबाइल नंबर 9848423059।

0: कबू कापिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आजी था, कहा कना हो कहा कना हो। बाबा के वस्तु बाटिन गतिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहा
0: था। का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो वो तो कहा टीकापुर मरलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से। वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आनल बाटी, ना कबू लड़का कापी रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन। ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में। रख गई यहाँ झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिकला झोला है मरमत फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: नरेश दादू मैं तो अपना फोन एक की दौड़ती आ गई है भौजी कहाँ बाटी
1: ओ गोंडे में सुटल बाटी बाबू चोली न भरी
0: भौजी कहाँ से काटन अपना हन हरक आदर पावे तो सफा सुखर बनाई लो बाटी तर फिर काटी तो जा रहा ना अपना हन
2: यहाँ पोली बुकर कटल हो नानी अपना एम्बुलेंस है ना खबर तो करना बाटा कटा देर में को आप ना हो
0: ना ते भौजी हमरा बाटी अपना हना कुछ नहीं हुई बिन गुआरा हना जिन चलेगी वो नरेश दादू एम्बुलेंस में ना समय लागे से था नगर के मोटरसाइकिल बाक लगे वही में बैठा कर भौजी है ना सरपरल सा उपचार केंद्र ले जी ना तैयारी करो पड़ल
1: ये बेला तक खाना जात फे दिए न्यू इट ना स्वयं सेविका दीदी
0: हो अब ना ठीक करी डॉक्टर और निकट सम बेरमेन कुछ से खवाई नहीं हुई
3: सपवा कट्टी की सहज वातावरण बनाए नाथ सपवा कटलक अंगान स्थिर बनेना प्रयास कर पठा तम्म कस गेलक रुगा गरगहना घरी पेटी मुन्द्री बाकल से फफर करारी बेरम्या अपेले से झन समस्या बिना हुए कोशित बेरम्या न शांत रह सहयोग कर पठा क्यूमने सपो कटलक ठाव से ऊपर दौड़ी लिए कस खब नाथे कठ असी कर्ण से रक्त संसार में समस्या हुई सिक्ठा जेहीले करबेल सपवा दशलक शरीर का भाग काट खा फाक पौना अवस्था थे आई सिक्ठा
4: सर्पदंश संबंधी भर पर्द ओ सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में हेर सेवदिठा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: टिकापुर नगरपालिकाको स्थानीय बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी जरुरी सूचना
7: नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयुक्त पहलमा यही मिति 2083 साल वैशाख 28 गतेदेखि जेठ 3 गतेसम्म मूल्य पारदर्शिता सप्ताह मनाइरहेको बेहोरा सबैमा जानकारी गराइन्छ
6: टिकापुर नगरपालिकाबाट गरिएको नियमित बजार अनुगमनको क्रममा यस क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका व्यापार व्यवसाय पसल होटल रेस्टुरेन्ट औषधि पसल किराना लगायतका व्यवसायहरूमा बिक्री गरिने वस्तु तथा सेवाको मूल्य सूची राखेको नपाइएको हुँदा प्रत्येक व्यवसायीले बिक्री गरिने सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाको स्पष्ट र अध्यावधिक मूल्य सूची सबैले देख्ने स्थानमा अनिवार्य रूपमा राख्न हुन सूचित गरिन्छ
7: प्रत्येक व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय अनिवार्य रूपमा दर्ता तथा नवीकरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ
8: बिक्री गरिने सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाको स्पष्ट मूल्य सूची उपभोक्ताले सजिलै देख्ने स्थानमा राख्नुपर्नेछ
7: उपभोक्तालाई खरिद गरेको वस्तुको बिल उपलब्ध गराउनु पर्नेछ
8: म्याद नागेका गुणस्तरहीन तथा अखाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन
6: बिक्री गरिने सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाको स्पष्ट मूल्य सूची उपभोक्ताले सजिलै देख्ने स्थानमा राख्नुपर्नेछ
7: खाद्य तथा उपभोग्य सामग्री बिक्री गर्ने व्यवसायीले सरसफाई तथा स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ
6: कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने कालोबजारी गर्ने तथा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गर्ने कार्य गर्न पाइने छैन
7: व्यवसाय स्थल वरपर सफा व्यवस्थित तथा सुरक्षित वातावरण कायम राख्नुपर्नेछ
6: बजार अनुगमनको क्रममा आवश्यक कागजात दर्ता प्रमाणपत्र खरिद बिल लगायतका विवरण अनिवार्य उपलब्ध गराउनु पर्नेछ
7: नगरपालिका तथा सम्बन्धित निकायबाट जारी गरिएका निर्देशिका मापदण्ड तथा नियमहरूको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेछ
6: प्रस्तुत मापदण्डको अनिवार्य रूपमा पालना नगरेमा प्रचलित नियमानुसार भइजाने बिहोरा समेत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ टिकापुर नगरपालिका कार्यालय